पंचम लगाउण नाल इस सूरज कौंस बन जांदा है। और जो कौंस योग राग दे नाल कौंस मिलाप दे नाल योग कौंस बन जांदा है।

एक ताल दो ताल हुण तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हुण तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राव जोग

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई। जब ते सत्संग में पाई ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब इनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहे प्रभु कह देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने ये तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इत्थे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, क्योंकि असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ, ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ये सानू लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कहा जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में नमस्कार की। इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब तो तराना श्रवण करना। साहब सब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलों प्रकाश ग्रंथ के अंदर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना।

चार पंक्तियां हैं। धागिर दी धर्म दृष्टांत धागिर दी देम दिरना धागिर दी धर्म दृष्टांत धागिर दी देम दिरना धागिर दी ब्रिक्ते

रोग पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात तो दाई दया खेले गर्मी अप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम मशक्कत नानक

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगीस करते जोगा, लाख पोगीसर भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बाहर या तेरा अंत न पारा।

के बंगाली फरंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावार या। रो के रुगेले मग देश के मंगेले भी, बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालित है, गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे गुन गावे।

दोत्या तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्व धन तम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बहरिया तेरा

0: सब तन का गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा भजिया तू तन तन समरण कर ले
1: मैं तुझ बिन अगर न होई तुझ आपे

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

और इस अमृत को प्राप्त कौन कर दे हम, जिन जिन बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार, जिन्होंने वही शब्द नु सुने कन्ना नु कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है, ओ खुशकिस्मत। गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत रसता है, पर पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हां दे अंदर प्रेम दी रत्ती ओ बिन अमलां तों खीवे, उन्हां नू झूठे अमल दी लोड़ ही नहीं। जिन्हां दे अंदर प्रेम दी रत्ती ओ बिन अमलां तों खीवे, अठे तहर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे। फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते हैं, दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी। पहला तो दीवा बनाइए, फिर उसनू पकाइए, फिर ओले वास्ते तेल सरसों में नपीड़ के करना पैंदा। सरसों किस तरह उगदी, बड़ी मेहनत। फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा, वट दी लोड़, उहदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी। फिर वट भी लगा रखी है, हुण जगाइए भाई दीवा। ए सोहना दीवा जगाई किवें जगेगा? प्यार दे नाल, प्यार दे नाल दीवा जगेगा। जो भी जग गया दीवा, फिर लोग आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे, आखो सी भाई, सारे आखो भाई। सरत माई भाई, जो मेरे धन गुरु नानक दे दरबार च आके जुड़े हो, आओ भागा वाले हो, अपनी रसना पवित्र करो, सेवक दे कन सफले करो, प्यार नाल आखो सतनाम। धन्यवाद। जो गुरु दे प्यारे जुड़ बैठे हो, और गुरु जिसने सानू सबो कुछ दिता है, साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली। बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदार, तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते ने। कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है, आखो सी हो सा भी कोई बापू, दूजियां दे बापू अपने बच्चियां नूं मठियाईयां लिया के दें, खिलौने लिया के दें, तरह तरह की चीजा लिया के दें। बेबे साडा भी कोई बापू, वीर मैं इन्हां नूं छाती नाल ला के कहनी हां पुत्तो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है। पर वीर हुण ना जा, हुण ना परदेसां नूं जा। तो प्यारी सत्संगत परमकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता। पुत्तर जगत दा मिठा मेवा है प्यारिओ, पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता दी छाती ठर जाती है। पर मेरे दाते ने अपने पुत्रां नूं उठा के ते बेबे वल मुखातर होके कहा, सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले, सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले, रब आप ही पालसी सारियां नूं, जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दुलारे। बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार, दुनिया दुखी है, काम क्रोध मोहंकार दी अगली साड़ी है। बेबे मेनू जान दे ना बिठा इत्थे, संसार रोगी हो चुका है, ए संसार रोगी नाम दारू, नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो, यही दात बनती है। आए कर प्यार नाल पढ़ो, पहले सेहत बोले तो पीछे सारी संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा। बाबा जी बचन करते सन, जरा संगत जाके रौला पाता है वह इतों कुछ नहीं ले जाता, जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता,
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگا کا چور تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگت پہلا شیر بولے پیچھے ساری سنگت واہ گرو نانک

बहुत पुरातन राग रहे, ऐदावादी ऋषभ संवादी पंचम ने, ये ओडव जाति का राग है भाव, एर अंदर पंच सुरां लगदियां ने।

जा कूड़ पर जा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ पा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप

कौड़ीदान महंडा तलिखा तुमले तो मस्त कलाई है कूड़ा लाल छेड़ी है होए कमनाल त्याई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो

खत्री शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द का करत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नानक दास है सो नंदन दियो महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा वस्तु जे को

लेकिन अगर जिंदगी दे विच म्यूजिक आ गया, लाइफ इटसेल्फ अगर म्यूजिक बन जाए तो फिर मिजरी नहीं आ सकती। गुरु नानक साहब महाराज की कोशिश यह है कि साडे जीवन नु जो है वो संगीत बनाया जा सके। तो आओ इस लाइन नु बार बार गाया है, तेरा जन नृत करे गुण गावे। ऐ प्रभु तेरा दास तेरा जन नृत्यकारी करता है, गुरसिख भी नृत्यकारी करते हैं, गुरसिख भी डांस करते हैं, लेकिन केड़ा डांस? अकाल पुरख वाहिगुरु की उस्तुति करनी, उसने गुणा नु गाना, उस दी जो सारे साडे आले दुआले एक मिस्ट्री छाई पई है, उस मिस्ट्री नु समझदिया होया, उस दे नाल जुड़दिया होया, उस दे विस्मार दे विच रहना। वेख विडान रहया विस्मार, ये तमाम इतना वड्डा पसारा अपने आले दुआले देख के उस प्रभु दी वाह वाह करनी, उस दी सिफत सलाह करनी, उस दे इना तमाम विस्मादा नू महसूस करदिया होया इस दी थ्रिल नू महसूस करना तेरे जन दे वास्ते असल डांस है। आओ प्यार दे नाल इस पंक्ति नू इक दफा होर गाइए।

एक शब्द हम मैं थोड़े सामने पेश कर लगा, बहुमुला शब्द है। इस शब्द की कोई कीमत नहीं दी जा सकती। गुरु साहब सानू इस शब्द हम यह समझाने लगे हैं, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ एक साज जो हैं वो सानू इंट्रोड्यूस करन लगे हैं। उन्होंने पता है हर बंदा ना सितार सीख सकता है, हर बंदा ना तबला सीख सकता है, हर बंदा ना राग सीख सकता है, बड़ी मुश्किल गल है राग सीखना, हर बंदा ना हारमोनियम सीख सकता है, हर बंदे नु कीर्तन करना नहीं आ सकता। लेकिन मैं इस शब्द नु पढ़ के दंग होया, हैरान होया, आनंद आया कि गुरु महाराज ने कहा ये साज नहीं भी आंदे तो कोई गल नहीं, असल साज ही और हैं, वो आने चाहिए हैं। प्यार नाल सुनो शब्द, कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज का ये महान रब्बी कलाम है, कहते हैं वाजा मत, जो अच्छी मत है ना वही असल वाजा है। इंटलैक्ट इज द रियल इंस्ट्रूमेंट, इंटलैक्ट विजडम, कहते हैं जो मत है ना सो जी अकल, यो असल वाजा है, ये वाजा होना चाहिए, बारला वाजा ना भी हो। अगली गल पखावज भाव, पखावज कहते हैं तबले, कहते हैं वाहिगुरु का भाव ही असल तबला है, जिस दे कोल ए वाजा ते तबला आ गया कहते हैं होए आनंद सदा मन चाओ, उस इंसान की जिंदगी हमेशा आनंद रहेगा तो चाह खड़ा बनिया रहेगा। तो साध संगत ए वाजे ते बार बार ही रह जाते हैं, ये अंदर ते पहुंचते नहीं हैं, कई दफा इन्हों बजाण वाले टोटली नॉन म्यूजिकल रह जाते हैं कई दफा। लेकिन गुरु साहब कहते हैं मत का वाजा अते वाहिगुरु के प्रेम का जो तबला है ये तुहाडे पास है, ते असल संगीत तुहाडे पास है। कहते हैं अगे एहा भगत एहो तपताओ, एहो असल भक्ति है, एहो असल तप है कि गुरु दी मत दा वाजा अते वाहिगुरु दे भाव दा प्रेम दा जो है वो तबला तुहाडे पास होवे, जिस दे पास ए साज है ना अंदर ले, क्योंकि मत भी अंदर है ते भाव भी अंदर है, जिस दे पास ए वाजा ते तबला है असल साज ते उस दे कोल है, असल संगीतकार म्यूजिशियन वो है। अगली गल कहते हैं इत रंग नाचो रख रख पाओ, जिंदगी दे रस्ते उत्ते इस रंग दे विच वाहिगुरु दी मत अते वाहिगुरु दे पाओ दे विच कहते हैं पैर रख रख के नचदे हुए जीवन दे उत्ते चले। अगली गल कहते हैं पूरे ताल जाने साला, पूरे ताल दा मतलब के ताल दी समझ, रिदम दी समझ, प्रकशन दी समझ, कहते हैं असल रिदमिक, असल तबला प्लेयर, असल ड्रमर ते ओ इंसान है जेड़ा वाहिगुरु की सिफत सलाह जानता है। पूरे ताल असल ते तार ओ ताल ओ पूर सकता है जिसनू वाहिगुरु की सिफत सलाह आंदी है, होर नचना खुशिया मनमा, बाकी बारला सारा नचना टपना जो संगीत है ये तो कहते हैं एक मन की गल है, मन दे तल ते है, इस तो अगे नहीं है। अगे कहते हैं सत संतोख वजे दोए ताल, इथे ताल का अर्थ है छैणे। गुरु महाराज कहते हैं जिस इंसान के पास सत है, सत का अर्थ है परोपकारी सुभाव, सेवा करनी, केयरिंग एंड शेयरिंग। गुरु साहब कहते पास जिस दे पास केयरिंग एंड शेयरिंग एंड कंटेंटमेंट, सत संतोख कहते हैं उसकी जिंदगी दे विच दो छैणे वज रहे हैं। सत संतोख वजे दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, वाजा का अर्थ है पैरों के जड़ियां झांझा घुंगरू। कहते हैं वाहिगुरु नूं निहारना उसके दर्शन करने कुदरत दे विचों ही असल पैरां दे विच झांझना है, यानी ये अंदरले साज उन्होंने सानू दिते हैं। अगे कहते हैं राग नाद नहीं दूजा भाव, रब तो अलावा होर कोई प्यार ना रखना हिरदे दे विच ही असल राग है। जिस बंदे दे अंदर ते नफरत है, ड्यूअलिटी है, लेकिन वह कहता मैनू राग बड़े आंदे हैं, बाबा जी कहते कोई राग रोग नहीं आया, असल राग ते ए है कि वाहिगुरु तो अलावा होर को अंदर प्यार ना होवे, ए है असल राग। राग नाद नहीं दूजा पाओ, ए तरंग नाचो रख रख पाओ, इस रंग दे विच जिंदगी नू जो है रंगो, अते जिंदगी दे रस्ते दे उते जीवन दे मार्ग दे उते बाबा जी कहंदे हन नचदे हुए चलो, कुटदे हुए चलो। अगली पंक्ति पाओ फेरी होवे मन चीर, जो डांस करते हैं वह फेरियां लेंदे हैं, सर्कलिंग करते हैं। गुरु साहब कहंदे हन मेक यूर माइंड सर्कल अराउंड वाहिगुरु, अपने मन नूं वाहिगुरु दे आले दुआले पहुंचतियां दिओ। कहिंदे ने भाव फेरी, वाहिगुरु दा भाव ही असल फेरी होवे, नाच दी डांस दी होवे मन चीत, बहिंदिआं उठदिआं नीता नीत। वे कहिंदे हन तुसीं देखिआ होवेगा कथक डांस दे विच कई दफा कि जो नृत्यकारी करते हैं, जो डांसर होंदे हन, वह कदे घुमाटणियां लैंदे हन, कई किस्म दीआं मूवमेंट्स करते हैं, कई दफा वह अचानक जमीन उत्ते लेट जांदे हन। बाबा जी कहिंदे लेटन लेट जाने तन सुआ, ए समझ नूं समझना कि एक दिन इस तन ने हमेशा लई सुआह होके लेट जाना है, असल लेटना है। बाहरले इस लेटन नूं छड्डो, यानी जिसने ए लेटना नहीं सिखिया, बाहरला लेटना जो डांस दा वो व्यर्थ है, बेकार है।
लेटन लेट जाने तन सुहा इत रंग नाचो रख रख पाओ। अखीरलियां पंक्ति बाबा जी कहने सिख सभा दिखिया का भाव। आ बहुत समझण वाली गल है। कहते हैं सिखां दी सभा सिर्फ ओयो हुंदी है जिथे दिखिया का भाव होवे। दिखिया कहते हैं गुरु के उपदेश नूं, भाव कहते हैं इंटरेस्ट नूं, प्यार नूं। कहते जिथे सिख गुरु की दिखिया गुरु का उपदेश सुन दे प्यार दे नाल जुड़े हैं ओयो असल सभा है। अदरवाइज कोई सभा नहीं, बाकी क्राउड होंगे। सिख सभा दिखिया का भाव, जिथे सिख दिखिया दे वास्ते, दीक्षित होने दे वास्ते, सिखण दे वास्ते, एजुकेशन लेण दे वास्ते, ग्रो होने दे वास्ते, डिवेलपमेंट दे वास्ते इकट्ठे होंदे हन, कहिंदे हन ओयो असल सभा है। सिख सभा दिखिया का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाव। गुरमुख दे अंदर ए शौक होवे सच्चे नाम नूं सुनन दा। अखीर च कहिंदे हन नानक आखण वेरा वेर, वाहिगुरु दा नाम हिरदे च हमेशा वार वार वार वार लई जाना। कहिंदे हन इत रंग नाचो रख रख पै। ऐ जग्यासुओ, ऐ गुरसिखो, जीवन नूं इक डांस बना लो अते सारी जिंदगी जो है वह जिंदगी दे मार्ग उते डांस करदे चलो, डांस करदे चलो। कोई गल नहीं जे तुहानूं बाहर लावाजा नहीं बजाना आंदा, कोई गल नहीं अगर तुहानूं बाहर तबला बजाना नहीं आंदा, कोई गल नहीं अगर बाहर तुसीं घुंगरू अते पैरां झांझणा पा के जो डांस नहीं कर सकते। बाबा जी ने अज दे इस शब्द दे विच जो असीं सुनिया है, होर किस्म दे साज सानूं जो हन इंट्रोड्यूस कीते हन, होर किस्म दे साज सानूं बख्शे हन। कहिंदे हन अगर इह साज तुसीं जीवन च लै आओ ते तुहाडा जीवन संगीत बन जाएगा, तुहाडा जीवन एक नृत्यकारी बन जाएगा। मैं फिर दोहरा दिया, मत दा वाजा, वाहिगुरु दे पाओ दा तबला अते सिफत सलाह दे घुंगरू। हजूर कहते हैं सत संतोख दे ताल अते पैरां दियां जो झांझरां हन वाहिगुरु नूं निहारना है जी। अगली गल कहते हैं वाहिगुरु तो अलावा होर कोई प्यार ना रखना ही असल राग है। इस रंग दे विच नचो ते डांस भी उन्हें दस्या है कि वाहिगुरु दे सिमरन दे आले दुआले मन नूं कमाउणा ही असल फेरी है। तन नूं ए जानना कि एक दिन इसने सुआह हो जाना ही असल लेटना है। तो इस रंग दे विच अपने जीवन नूं रंगो, जिंदगी नूं इस तरह संगीतक बनाओ, जिंदगी नूं इस तरह एक नृत्यकारी दे नाल करो। तो इन्हां शब्दां नूं असीं सुणीए। बाबा जी ने अंदरले साज दसे हन, अंदरला नाच दसिया, अंदरली नृत्यकारी दसी है। अते जे किसे दे जीवन च ए नहीं साज हन, वह बाहर जिन्ने मर्जी साज बजाई जाए, ना वह सजिंदा है ते ना ही वह कीर्तनीय है। क्योंकि गुरु महाराज ने कीर्तनिया दे वास्ते भी एक गल कही है, वह भी मैं तुहानू सुनानी चाहना हाँ। कहिंदे हन हजूर कहिंदे हन पलो पलो रे कीर्तनिया। असल कीर्तनिया तो वह भला है, पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। जेड़ा माया दे नाल झूठे धंधिया नूं छोड़ दे, जिस दी विरती दे विचों, माया दी साथ संग जरूरत सारिया नूं, कीर्तने नूं भी जरूरत है, उसने भी खाना है, उसने भी जीना है। लेकिन अगर उस दी विरती सिर्फ माया है दे वास्ते कीर्तन करदी है, कीर्तन दा उसके अंदर कोई इश्क नहीं है, बाणी उसके जीवन का आधार नहीं है, ते हजूर कहंदे ना कीर्तनिया नहीं है। पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। अगे चल के कहंदे हन कि असल कीर्तनिया ते ओह हुंदा है पंच बचित्र करे संतोखा, पंच बचित्र करे संतोखा, सात सुरा लै चाले। कहंदे हन पंज जो बाजे हन, काम क्रोध लो मोहंकार, पंच बचित्र करे संतोखा, पंज किस्म दे जो धार्मिक गुण हन, सत संतोख दया धर्म धीरज, इन्हां नूं अपने बाजे बनाए। संतोखा सात सुरा लै चाले, बाजा माण तान। कहिंदे हन माण नूं तजना ही उसका असल बाजा होवे। ताना पाओ ना बीगा काले, बुरे पासे रस्ते उते ना रखना पैर ही कीर्तनिया दी असल ताना होण। तो ऐसा उपदेश महाराज ने सानू बख्शिया है। तो आओ अज दे इस कीर्तन दे विचों अपने जीवन दे विच इन्हां साजां नूं असीं अंदर लैके आईए। गुरु साहब ने कहा ओंकार एक है धुन, एक धुन एक है, ओंकार एक धुन एक है राग अलापे। कीर्तनिया ते कहिंदे ओ हन जो उस एक ओंकार दी हमेशा धुन दे विच रहे ते उस वाहिगुरु दा हमेशा अलाप अलापदा रहे। एक का देसी, हमेशा एक वाहिगुरु दे देश दे विच रहना उसका सुभाव होवे।
एक दिखावे सारी दुनिया नु भी कीर्तनिया वाहेगुरु एक दे दर्शन कराने की कोशिश करे। एको रहया व्यापे एकता सुरत एका ही सेवा उस कीर्तने दी एक ही वाहेगुरु दे प्रेम दी सुरत बनी रहे उस एक दी ही आराधना करदा रहे एको गुरु ते जापे ते ओ कीर्तनिया आप ही गुरु तो उस एक दा जाप करना सिखे कहिंदे ओ कीर्तनिया हुंदा है ओ असल साजंदा हुंदा है ते ओ साज सानू सारयां नू महाराज ने अंदरले बख्शे हन असीं इन्हां अंदरले साधां नू सिख जाइए तो असीं सारे संगीतकार बन जावांगे असीं सारे नृत्यकार बन जावांगे अते असीं सारे कीर्तनिया बन जावांगे साडी जिंदगी संगीत अते नृत्यकारी दे नाल भरपूर हो जाएगी। आओ प्यार दे नाल इस पंक्ति नू इक दफा गायन करके समाप्त

दूसरे शब्द शरण करो जी, रत्न रत्न पदार्थ वसा पर्याय वाणी गुरबाणी लागे तिन हस्ते।